रहे मेरा मस्कन हवाली काबा, बने मेरा मदफन दियारे मदीना. समटाइम्स आई स्टे अराउंड द काबा शरीफ, बट माई मदफन, माई प्लेस ऑफ रेस्टिंग, माई प्लेस ऑफ फाइनल रेस्टिंग मस्ट बी मदीना शरीफ. या अल्लाह ब्लेस मी, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, सीकिंग फ्रॉम अल्लाह ताला, दैट मेक माई डेथ इन मदीना तैयबा, मेक माई बरियल इन जन्नतुल बकी. पहुंच कर न हो लौटना फिर वहां से, पहुंच

आया बुढ़ापे ने फिरा के क्या क्या सताया, बुढ़ापे ने फिर आ के क्या क्या सताया, अजल तेरा कर दे ये बिल्कुल सफाया। जगा जी लगाने

कहूँ काश होता मदीने में मेरा वतन। फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ काश होता मदीने में मेरा वतन। शहरे महबूब होगा जहां भी कहीं, वेयर इज द सिटी ऑफ द बिलवड, आशिकों का सुना है वही है वतन। सो इफ दैट इज द केस देन व्हाट अबाउट मदीना शरीफ, काश होता मदीने में मेरा वतन। व्हाई? बिकॉज माय बिलवड इज इन मदीना शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस तरह मैं कहूं दिल से ऐ दोस्तो, किस तरह मैं कहूं दिल से ऐ दोस्तो, जिंदाबाद ऐ वतन, जिंदाबाद ऐ वतन। है वतन में मगर दिल मदीने में है, है वतन में मगर दिल मदीने में है। ऐ मदीना फिदा तुझ पे हो सद वतन। फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ काश होता मदीने में मेरा वतन। सो वी मेक शुक्र ऑफ अल्लाह तबारक व तआला दैट ही गैदर्ड अस फॉर दिस मजलिस ऑफ जिक्र। सो नाउ वी विल मेक सम जिक्रुल्लाह। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है,

वे हजी रह गई मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्की वही रह गई।

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। ओ माय बिलवर अल्लाह, विद योर फजल, विद योर काइंडनेस, विद योर एहसान, विद योर फेवर, ब्लेस अस विद द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। We know that we are deserving of your anger, of your wrath. But my beloved Allah, you love forgiveness of sins. So therefore give us aman, give us salvation, give us najat. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you. Ya Rab, karam se apne tu dono jahan de. जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे।